फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी

0: भारत लौट चुके हैं एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर लखीमपुर दरांग सोनितपुर धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
1: ये है विविध भारती

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे। यानी हमें समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनेगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर भाग दूसरा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:00 से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया। मुंह में राम बगल में छुरी। सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू फिनटेक कंपनी मोबीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें। सेहतमंद भोजन सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4:00 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर ताराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर भाग दूसरा। प्रस्तुति रूपाली रूपक की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8:00 सुनिए प्रहसन बाज आए ऐसे फैशन से। लेखन नाजनीन का। निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। 8:15 पर चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10:00 छाएगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11:00 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें रिखभ और धैवत कोमल है, दोनों मध्यम है, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुने ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र फैशन स्थिरता प्रौद्योगिकी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत धागा कारखाना फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार निवेश नवाचार नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.

आईएन पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, विधानसभा सत्र में विधेयक के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश से एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित होगा। दतिया उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 32 नामांकन पत्र दाखिल किए गए और प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल संहिता का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा। प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में संकलित है। पहले खंड में समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य के विभिन्न विधियों तथा प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। दूसरा खंड मध्य प्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है। यूसीसी के लिए आए सुझावों में मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया गया है। विधेयक के परिमार्जन और वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है। स्पेन का समर ग्रुप मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये जानकारी कल भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में दी गई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
2: मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। 2024 से

0: 7800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विकास नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में BSNL की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की अस्थायी बढ़ोतरी दर्ज की है।
2: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: Other operating income is not included.
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसके तक 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर दतिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा भरवाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। सीजन 2 का लक्ष्य ऐसी उद्योग संचालित, सरकार समर्थित और युवाओं पर केंद्रित चुनौतियों को पूरा करना है जो रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें निखारें। इसके साथ ही कौशल को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। FCI ने कहा कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की खबरें निराधार हैं। जांच केवल लगभग 242 क्विंटल चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5,63,000 रुपये है। FCI ने स्पष्ट किया कि 1,160 करोड़ रुपये की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम ने 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा इस बार जुलाई माह में माइनस में आ गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेस्ट से 17 और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में 10 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2,74,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की सभी 64 पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडौरी के धमन गांव में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत माँ के नाम अभियान के तहत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 फलदार पौधे लगाए गए। मंडला के पीएम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी में प्रवेश के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाजापुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अतिरिक्त सीएलसी राउंड के तहत प्रवेश मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।

मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था रंगीन रातें फिल्म से था। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी, केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत इस गीत से।

कहाँ हो तुम जरा आवाज़ दो हम याद करते हैं। मल्हार फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में कैफी आज़मी ने बोल लिखे थे और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था। नमन है संगीतकार रोशन को जिनके गीतों की ताजगी भाव और मिठास दिल को छू लेते हैं। अगला गाना बरसात की रात फिल्म से लीजिए सुनिए।

जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार साहिल लुधियानवी थे और संगीतकार थे रोशन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में चित्रलेखा फिल्म का गीत। शब्दकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चित्रलेखा, साहिल लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है एक बहुत छोटे से अंतराल का।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजा ये ही रांझा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना सुनिए मदन मोहन के बनाए संगीत पर।

ये गीत आप सुन रहे हैं नीला आकाश फिल्म से, आवाजें मोहम्मद रफी आशा भोसले की हैं, राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं मदन मोहन की तर्ज।

आकाश फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने तर्ज बनाई थी। इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने हीर राजा फिल्म से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है इसे मदन मोहन ने। अब आपको ये गीत सुनवा रहे हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया
2: दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
3: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया।

0: सभ्य अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nte.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की

भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें श्रेया घोषाल जावेद बसीर की थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था। शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लुटेरा फिल्म का ये गीत।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज मोनाली ठाकुर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
6: एक और आ गया।
7: जल्दी बुलबुल कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे प्रीतम और फिल्म का नाम था भूल भुलैया। ये है गुरु फिल्म का गीत।

हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे ए आर रहमान।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद फिर से सुनिएगा।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत
1: तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
0: बातें जो देती हैं हौसला शब्द जो देते हैं सुकून
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
1: देना साथ मेरा ओ हम नवा
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी
1: तुम आ गए हो नूर आ गया
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। वो लीजिए, आप प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून तक चलाए गए जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल सहेजने के कार्य करवाए गए। जिले में 18,704 कार्य हुए, जिसमें लगभग 24 लाख घन मीटर जल संग्रहण क्षमता की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में 1,000 अमृत मित्र बनाए गए हैं। इस अभियान के समापन अवसर पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। ग्वालियर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का शुभारंभ बीते दिनों जनपद पंचायत मुरार की ग्राम पंचायत उदयपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर जाटव ने किया। इस कार्यक्रम में वीर नारी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित पर्यावरण अनुकूल मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अभिनव पहल ने पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वसहायता समूहों की सृजनात्मक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बीते दिनों मध्य प्रदेश के भ्रमण के उपरांत 22 जून को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने विदाई दी। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्वालियर जिले में बनाए गए 2,356 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर भी पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने, इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में मूर्त रूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भी रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी व ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस माह भी कई जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी हैं। जिले में अब तक 123 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बीते दिनों ग्वालियर पुलिस द्वारा रोटरी क्लब ग्वालियर और भारत विकास परिषद शाखा ऋषि गालव के सहयोग से विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा द्वारा जिला खेल परिसर कंपू से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में 200 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों के साथ ग्वालियर में भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम से इस योजना के तहत देश भर के लाभार्थियों के खातों में 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की, जिसमें कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से जुड़े कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के खातों में पहुंची लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 4 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में जापान में आयोजित हुए महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्वालियर की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों नौशीन नाज, नम्मी, गीताश्री, स्नेहा दावड़े और महक परिहार का कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी, आलेख नवीन श्रीवास्तव का था और वाचक थे अभिषेक कटियार। BT5 DTH के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर और मैं हूं आपके साथ।
2: राइट सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबर जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
3: जी।
2: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
3: जी जी।
2: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
3: हाँ।
2: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
3: बिल्कुल
2: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
3: जी।
2: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
3: जी।
2: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
3: बिल्कुल तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
2: राइट पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
3: जी।
2: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
3: जी।
2: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
3: जी जी।
2: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
3: जी।
2: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है लेकिन तपास करनी जरूरी है
3: जी जी।
2: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
3: जी।
2: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
3: जी जी।
2: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
3: जी।
2: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
3: जी जी जी।
2: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं
3: जी।
2: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है
3: जी।
2: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है
3: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है।
2: राइट सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को
3: जी जी।
2: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है
3: जी।
2: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है।

0: कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है।
1: जी
0: PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है।
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ।
0: बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरदहस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है। लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की ज़रूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफ़ी बदलाव आया है। एक ज़माना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्यूएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाइयां आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर। ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और TURP कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है। ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है।
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास

0: है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है, अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे
1: जी
0: हमें
1: जी
0: 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट। जो
0: जी
1: स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TURP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है
0: जी
1: और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है।
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है। पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
0: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
1: ओ,
0: कौन सा
1: जरूर,
0: गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: वाह, क्या बात है, किशोर कुमार की
1: किशोर
0: आवाज।
1: कुमार की आवाज, क्या गाना है।
0: जी, सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सब को भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीज़ों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर ज़रूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा
1: लोग? एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
0: जी।
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
0: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं,
0: जी हाँ,
1: कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीज़ें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
0: जी जी।
1: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
0: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
0: जी।
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
0: दोनों एक दूसरे से जुड़े That's हुए right. हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा गाना?
1: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: ब्लैक
1: काफी
0: का गाना।
1: जी, रोमांटिक गाना है लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
0: जी जी, डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे।
1: तो जी,
0: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
1: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन एक जमाना था गाते थे
0: जी।
1: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है।
0: जी जी,
1: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं। सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
0: जी जी,
1: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
0: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
1: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
0: बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी।
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा हो के वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना ज़रूरी हो जाता है।
0: जी।
1: सो काफ़ी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है।
0: जी।
1: सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे

0: कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
1: जी
0: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
1: जी जी
0: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होके आ जाते कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
1: जी जी
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
1: जी
0: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
1: जी
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल।
1: जी
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए।
1: जी
0: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफ़ी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है।
1: जी
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफ़ी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है।
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है।
1: जी।
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है।
1: जी।
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
1: जी।
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है।
1: जी जी।
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर।
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है
1: जी।
0: बहुत अच्छा गाना है
1: जी।
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
1: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।
2: झूठ

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है।
0: हुँ.
1: क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसकी आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना ज़रूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी ज़रूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल।
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी।
1: दूसरा इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है, ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
0: जी दोस्तों, सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तुथे कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

तुम इनसे उनसे करे, तुम इनसे उनसे हंसी मिलाना कर जानी, तुम इनसे उनसे देखा है मैंने करते हो कुछ ज्यादा।

मेहरबानी।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजें, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरिहरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अली शाह लव नोट्स इस एल्बम का गाना अली शाह की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। चांदनी इस एल्बम का गाना वनिता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरम रुमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलरम रुमध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाके बंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है कजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज़ में कैफी आज़मी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म, इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल कैफी आज़मी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गज़ल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहाँ कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफ़र कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गज़ल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज़ है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्लाह क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया यह गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहाँ कंप्यूटर से संगीत बनता है, वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहाँ कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियाँ कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं। इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायास ही। इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत। मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं। इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ है इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्राय ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है, संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते तब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ें हैं इसमें, रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहाँ सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना ना मिले चलेगा पर गीत ज़रूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट कर चुका था, सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं, कंफ्यूज था। उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। दोनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार घुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हों तो वह संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है, रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया, और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से, आवाज है मिनी मिनी की।

यार रहमान का संगीत पीके मिश्रा के लिखे बोल मिनी मिनी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रोजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल।

0: जतिन ललित का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा।
1: तो समान नागरिक संहिता UCC के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।
0: कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। एमपी टेक ग्रोथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर भी स्थापित होगा। कैबिनेट ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के खातों को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। यहां वे देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। इस दौरान राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ एकल बैठकें भी करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहां प्रदर्शित होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बात खेल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। ये लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहला महिला टेस्ट मैच था। इंग्लैंड को 457 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 186 रन पर आउट हो गई। ये भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में 7वीं जीत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी है। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिले भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत गुना, शिवपुरी और रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन, सीरम, सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में मेरा युवा भारत के तहत जिला पेंशन कार्यालय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को पेंशन विभाग की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन फाइल संचालन और डिजिटल प्रशासन की जानकारी दी गई। और बुरहानपुर जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार। समाचार के साथ मैं कनकलता।
2: भारत ने होर्मुस जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
3: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
2: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार

0: केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण

0: उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते

0: वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
1: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई है सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YARNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है नौ निहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से, मदन मोहन की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: नम्रा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं, तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और एक कि उनका इंतजार होता है,
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते ही।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
1: तो
0: मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
1: जी
0: जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है, तो उस दुनिया के संपर्क में तो हैं लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया।
0: बिल्कुल,
1: तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना पड़ता होता था, तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है
1: हाँ,
0: वहां पर बात किया करते
1: घंटों
0: थे,
1: लंबी लाइन में लगा करते
0: है
1: थे।
0: ना, लगे
1: हाँ
0: रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें
1: जी
0: बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं,
1: हाँ
0: और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते
1: बिल्कुल सही
0: हैं
1: कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहाँ भी नज़रें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, भाई किसी
1: हाँ
0: का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल
1: मतलब
0: इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है।
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए,
0: हाँ
1: ऐसा लगने लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए,
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना।
1: जी
0: तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे हैं रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे
0: घूम
1: होते
0: रहे
1: हैं।
0: होते हैं और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो,
1: जी
0: बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
6: हाँ, लेकिन चंचल हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
5: अच्छा?
6: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
5: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
6: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
5: हाँ।
6: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
5: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए

0: रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहाँ ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहाँ ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेन देन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है।
0: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट
1: एक
0: है।
1: अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं। ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा अभी आपने कहा, हम सब बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है। इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है,
1: जी।
0: लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो
0: तो
1: अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है और
1: जी
0: सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपने अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती हैं खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहाँ भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ

0: मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर
1: बिल्कुल,
0: सकते हैं।
1: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना
0: जी
1: चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं,
0: जी
1: लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा,
0: जी
1: आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
0: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है। हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया
1: बिल्कुल,
0: हो।
1: सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता
0: और
1: है।
0: ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग
1: हाँ,
0: रहा है।
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं,
0: हाँ
1: किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुने और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं
1: तो हम
0: तो ताजा तेल
1: हाँ दोबारा
0: इस्तेमाल
1: उस तेल
0: करें।
1: का इस्तेमाल करने से बचते हैं,
0: जी
1: है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही
0: जी
1: खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है,
0: हाँ
1: हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
0: बिल्कुल इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज़्ज़ा
1: हाँ,
0: बर्गर ये चीज़ें हम घर में,
1: मोमोज, ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया
0: और
1: है।
0: बच्चे इन चीज़ों से बड़े
1: हाँ,
0: आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ हैं उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं,
0: जी
1: और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको?
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: यानी
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिख कर भेजा है।
0: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे,
1: समझाइए।
0: उदाहरण दे के समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे। यानी
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है?
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और
1: और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, नला ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
2: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का।
2: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
2: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
2: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
2: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी, तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
2: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा।
2: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार
1: जी, जी।
2: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है।
1: अच्छा। एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में, क्या बहुत बड़ी बात है,
2: बहुत बड़ी बात है
1: जी जी जी।
2: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
2: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ।
2: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी।
2: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है।
1: अच्छा।
2: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
2: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
2: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा।
2: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा।
2: जो मुझे यहाँ पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूँ। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे, मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे। लाइक ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए। मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा। एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है।
3: जी जी
2: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
3: बिल्कुल।
2: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार। बड़ी बोला गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
3: यस।
2: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है
3: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
2: सोच रहा है तो अच्छी बात है।
3: जी जी।
2: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ।
3: बिल्कुल।
2: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे। मैं उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ।
3: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है।
3: हाँ।
2: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी से भी वही हुआ।
3: जी
2: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
3: अच्छा।
2: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी और वो जाने को बोलते हैं।
3: अच्छा।
2: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर तो है कि, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
3: हाँ।
2: थोड़ा सा इमोशनल
3: है वो महात्मा बोल रहा है मगर। हाँ।
2: अब जो तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ तो, लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो। हाँ। थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है। ठीक
3: हाँ।
2: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राज जी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था। हाँ हाँ चलो चलो। मैंने बोला राज जी ये। हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू। कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया। ही लाइक्ड इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए। वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
3: क्या बात है।
2: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा।
3: हाँ, हाँ।
2: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
3: अच्छा।
2: तो विक्रम मराठी में काफी कैरेक्टर्स करता है,
3: बड़ा नाम है,
2: बड़ा नाम है, शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी हमने साथ में पहली।
3: अच्छा,
2: फिल्म थी।
3: अच्छा।
2: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
3: जी
2: बोले हम लोग अच्छे दोस्त है। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
3: जी
2: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
3: हाँ।
2: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
3: जी
2: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
3: अच्छा।
2: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
3: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
3: आइए सुनते हैं।
2: जी सर। दो लफ्ज़

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति

0: मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल
1: 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी,
1: एक
0: जी.
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी,
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहे तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी,
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं,
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ,
1: लाइव परफॉर्मेंस वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है।
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल। अच्छा, एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी,
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है।
0: हाँ।
1: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर।
0: जी जी, अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था
0: जी,
1: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते, उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते।

0: प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है.
1: अच्छा,
0: और लाइट कॉमेडी है.
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना.
1: हाँ,
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ,
1: जी
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है,
1: जी जी
0: जो शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट. तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है. IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
1: अच्छा.
0: IPC 324. और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे,
1: जी
0: जो कि YouTube पे अवेलेबल है.
1: हाँ,
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर. वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है,
1: जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई. और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया, जिसका नाम है पिया की दासी.
1: ओह,
0: या
1: क्या बात है.
0: तो मैं आपको गाना दूंगा, अगर आप यहाँ पे भी कर पाए. सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गमा या
1: अच्छा.
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहाँ पे वो रिलीज हुआ है. तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा, जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया.
1: जी
0: और
1: जी
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया.
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं.
0: बिल्कुल सर, थैंक यू. इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी.
1: जी आइए सुनते हैं.

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा,
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी.
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी,
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब। तो वो कैरेक्टर मुझे आया, हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है।

0: ऐसा करेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
1: अच्छा
0: अच्छा लगा, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा। ही सेड नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप हो जाओगे।
1: हाँ
0: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
1: अच्छा
0: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूँ उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूँ।
1: बिल्कुल
0: मतलब मैं परफॉर्म कर लूँ, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
1: बिल्कुल
0: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
1: हाँ
0: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
1: जी जी जी
0: तो वो एक करेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
1: अच्छा
0: रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को
1: जी जी
0: उनकी, वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
1: जी
0: प्रोजेक्ट मेरे
1: जी
0: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी, और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा दिखाएंगे।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
1: हाँ
0: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी।
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
1: अच्छा
0: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
1: हाँ
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन,
1: कई
0: तो
1: शेड्स हो सकते
0: कई
1: हैं
0: शेड्स हो सकते हैं।
1: जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
1: अच्छा
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
1: हाँ
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
1: जी
0: स्टोरी थी।
1: जी जी
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
1: ओह
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था। लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
1: अच्छा
0: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल,
1: अच्छा
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी
0: दैट
1: जी
0: वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था यूं ही चला चल रही,
1: हाँ, मकरंद
0: वो
1: देशपांडे
0: मकरन जी
1: उसमें,
0: थे उसमें,
1: उन पर वो
0: हाँ
1: फिल्माया गया।
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में
1: हाँ
0: उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन,
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर
1: हाँ
0: ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी जी
1: मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
0: अच्छा
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम, जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
0: जी
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे।
0: जरूर
1: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
0: जी
1: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
0: जी
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा
0: और
1: किरदार।
0: एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
0: जी जी
1: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था,
0: अच्छा
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो क्या बात
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से,
0: हाँ
1: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह वाह
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना
0: यही
1: ही
0: गाना सुन
1: बहुत
0: लेते
1: एप्ट
0: हैं।
1: होगा कि
0: बिल्कुल
1: हम जब
0: बिल्कुल
1: जी जान से खेलते हैं,
0: जी
1: जी जान से लड़ते हैं,
0: जी
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है,
0: जी
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीज़ों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना
0: हैं? जी
1: चाहिए।
0: जी
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, ये
0: हाँ,
1: किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ,
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी, हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ,
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टेन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ,
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ और
0: जी।
1: मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ।
0: जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है
0: हाँ,
1: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
0: जी।
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था कि
0: जी।
1: आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी, उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे, ये
0: हाँ,
1: मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: जी
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है उसमें आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो
0: अच्छा
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था।
0: अच्छा।
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था, कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 females, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह,
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
0: जी
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
0: डायरेक्टर,
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है
0: जी,
1: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
0: जी, जी, जी,
1: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
0: क्या बात
1: तो है? ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसपे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे

0: के संभलते क्यों हैं?
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
1: क्या बात!
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज आल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी जी।
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाय चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे। तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं
0: है। महत्व नहीं है। तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल, उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ।
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी।
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात।
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है। आइए सुनते हैं
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे
0: हाँ
1: कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब, तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

लेकिन वहाँ कोई और थी, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार।

0: इसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
1: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
1: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
1: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
0: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
1: जी।
0: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
1: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
0: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
1: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
0: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
1: जी,
0: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
1: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
0: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर

0: पत्र और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
3: आहा, क्या बात है
6: मैम।
3: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे-धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम।
6: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
6: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
3: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
3: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
3: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
3: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह।
3: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
5: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
5: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।
0: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।

0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।

0: मैम आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते

0: खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ,

0: क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
2: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार किशोरी बालिकाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट दर्द और ऐंठन, कमर व पैरों में दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव, अधिक या कम रक्तस्राव होना, नींद की समस्या, स्वच्छता की कमी और संक्रमण का खतरा, स्कूल और दैनिक कार्यों में असुविधा। घबराएं नहीं, थोड़ी सी सावधानी से इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड का उपयोग करें और 4 से 6 घंटे में इन्हें बदल लें। शारीरिक सफाई पर विशेष ध्यान दें, खूब पानी पिएं, हरी सब्जियां, दालें और आयरन युक्त आहार लें। हल्का व्यायाम और योग भी बहुत जरूरी है। इसके पश्चात भी यदि कोई समस्या या अधिक रक्तस्राव होता है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें।
1: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शहडोल द्वारा जनहित में प्रसारित

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों
1: को सुनने का। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भूतशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर होगी चर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, करीब 10,500 करोड़ रूपए के विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भोजशाला विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय रोजाना करेगा सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सोश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इस मौके पर करीब 14.5 करोड़ रूपए की लागत से बनी आधुनिक MRI प्रणाली का भी उद्घाटन होगा। सेमिनार में थाईलैंड, इसराइल और श्रीलंका सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 10,500 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी राशि शहरी अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है, जिसके तहत 8,445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,500

0: 87 करोड़ रुपए की निशुल्क सरकारी गारंटी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया, जिससे राजगढ़ और आगरमालवा जिले में 1,39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी अब महिला और बाल विकास विभाग को सौंपी गई है।
1: एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन का वहां से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई नए सुधारों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब कंटेनरों में उर्वरक और फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। मंत्री ने बताया कि वैगन का डिजाइन अब उद्योग जगत भी तैयार कर सकेगा। उन्होंने कौशल प्रमाणन प्रणाली को 24 महीने में सभी परियोजनाओं में लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पंचायतों के ऑडिट को आसान बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा भी शुरू हो गई। इस प्लेटफॉर्म से प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब घर बैठे किया जा सकेगा। ऑडिटर कहीं से भी पंचायतों के आय व्यय के रिकॉर्ड देख सकेंगे। पेमेंट गेटवे के जरिए नागरिक अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ आज भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। यह अभियान 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसका मकसद युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। अभियान में सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग भी सहयोग करेंगे। जिलों में जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कल समान नागरिक संहिता समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री ने समय पर रिपोर्ट देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। ये प्रतिवेदन 3 खंडों में तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग और 404 धाराएं शामिल हैं। समिति को इस दौरान 9.5 लाख से अधिक जन परामर्श प्राप्त हुए थे। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की सिफारिश की है। ये प्रतिवेदन अब विधि विभाग को भेज दिया गया है और विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।
3: यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भूछाला विवाद पर आज रोजाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूछाला परिसर में पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग फिलहाल ठुकरा दी है। पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि परिसर के पास शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने साफ किया कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। भोपाल में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्र में सप्लीमेंट्री बजट और नए कानूनों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा। सरकार इस सत्र में करीब 11 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक भी शामिल है। इसी बीच विधानसभा सचिवालय में करीब एक दशक बाद 181 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज किए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। इस साल अल नीनो के असर से अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीफ फसल का बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। ये बीमा सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देता है। किसान बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप के जरिए बीमा करा सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार सामान्य से कम बारिश हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा सभी विवादित प्लॉटों के कर क्रय विक्रय और नामांतरण पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। छतरपुर और धार जिले में आज दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंडला में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग का 10 दिवसीय विशेष जांच अभियान जारी है। झाबुआ और बैतूल जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। भोपाल में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 15 जिलों के पात्र पुरुष अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश। शाम की
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई बार किशोरी बालिकाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट दर्द और ऐंठन, कमर व पैरों में दर्द, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द,

0: सलाह जरूर लें।
1: जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शहडोल द्वारा जनहित में प्रसारित
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

शाम के 7:30 हुए हैं। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी कम बारिश के विषय में। आज भी हम इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों, आपको मालूम ही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बनी हुई है। हाल फिलहाल बारिश में कुछ कमी की आशंका भी बताई गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा खरीफ की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। केंद्र सरकार ने भी कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं, जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, ये विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मानसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मानसून में देरी या कम बारिश का सीधा असर फसल की बुआई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीण भाइयों और बहनों की आय और खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में अगर जुलाई और अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार हो रही हैं। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन करने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है। साथ ही कोशिश ये है कि किसानों के लिए बीज उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती है। अच्छी बात यह है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए रियल टाइम सलाह किसान भाइयों और बहनों को देकर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है हमने आधी लड़ाई जीत ली है। किसान भाइयों और बहनों, हमने बात की थी कैच द रेन, यानी कि बारिश का पानी जहां भी गिरे उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब मोबाइल फोन पर मौसम संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध है। मौसम आधारित कृषि निर्णय लेने से जोखिम कम किया जा सकता है। इसके अलावा कम अवधि वाली और सूखा सहनशील किस्मों का भी आप चयन कर सकते हैं। खेत, तालाब, फार्म पॉन्ड, मेड़बंदी, कंटूर बंडिंग और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकें भविष्य की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है। इसके विषय में विस्तार से

0: पिछले कार्यक्रम में बताया गया था, अगर आप इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो फिर से आप आकाशवाणी शहडोल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सर्च करें यूट्यूब पर आकाशवाणी शहडोल। तो किसान भाइयों और बहनों, आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिए एक प्रभावी और समग्र नीति बने। ये शासन स्तर पर भी होना चाहिए और आपके स्तर पर भी समय समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए। जरूरी ये है कि जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिए जरूरी है कि सूक्ष्म सिंचाई सुविधा का विस्तार हो, जल निकायों के पुनरुद्धार होने चाहिए और भूजल प्रबंधन यानी कि जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है इसको बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। किसान भाइयों और बहनों, वर्षा में देरी या कम होने की स्थिति में किसानों के नुकसान को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक सलाह है जो आपको दी जा रही है। पहली प्रभावी वर्षा 75 से 75 मिलीमीटर के बाद बुआई करें। इसके अलावा मेड़बंदी और मल्चिंग कर सकते हैं आप। पहली अच्छी वर्षा के बाद ही बुआई करें। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित कम अवधि की किस्में चुनें। उपलब्ध नमी के अनुसार बीज दर और फसल का चयन करें। अगर मानसून 15 से 30 दिन विलंब से आता है तो इसके लिए आकस्मिक सलाह ये है कि जो ज्वार की अगर फसल आप लगा रहे हैं तो कम अवधि यानी कि 80 से 100 दिन की किस्में चुने। इसके लिए बीज दर आप ले सकते हैं 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसकी समय सीमा है जुलाई प्रथम पखवाड़ा तक। इसके बाद बाजरा अगर ले रहे हैं तो शीघ्र पकने वाली किस्में ले सकते हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक। तिल ले रहे हैं तो कम वर्षा में उपयुक्त फसल है ये। बीज दर में 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जुलाई के अंत तक ले सकते हैं। मूंग अगर ले रहे हैं 60 से 65 दिन वाली किस्में चुने। बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जुलाई अंत तक बुआई कर सकते हैं। उड़द अगर बो रहे हैं तो 70 से 80 दिन वाली किस्में चुन सकते हैं। बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं और जुलाई के अंत तक जा सकते हैं। अरहर अगर बो रहे हैं तो केवल आरंभिक वर्षा होने पर ही जो शीघ्र पकने वाली किस्में इसमें आप लगा सकते हैं। इसको आप अंतरवर्ती फसल के तौर पर भी ले सकते हैं। जुलाई के प्रथम पखवाड़े में आप इसको लगा सकते हैं। सोयाबीन अगर ले रहे हैं तो जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक ही बुआई करें। इसके बाद वैकल्पिक फसल अपना सकते हैं जैसे तिल, मूंग, उड़द और ये भी जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक ही लेना है। अगर वर्षा सामान्य हो रही है तो खेत में मेड़बंदी, कंटूर बंडिंग और जल संरक्षण करें। मल्चिंग फसल अवशेष के माध्यम से कर सकते हैं। समय पर खरपतवार का नियंत्रण करें ताकि नमी की बचत हो। उपलब्ध पानी से जीवन रक्षक सिंचाई देनी है। यूरिया की पूरी मात्रा एक साथ नहीं देनी है, 2 से 3 बार में दें। 2% यूरिया या 1% पोटाश का पर्णी छिड़काव आप कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। कीट और रोगों की नियमित निगरानी करनी है और जुलाई के अंत तक वर्षा अगर कम होती रही या न हो रही हो तो जो वैकल्पिक फसलें हैं वो है तिल, मूंग, उड़द, बाजरा और उसके अलावा ज्वार वगैरह भी ले सकते हैं। गहरी जुताई पहले करें नमी संरक्षण के लिए। खेत समतलीकरण करें। प्रत्येक खेत में मजबूत पेड़ लगाएं। खेत का जो वर्षा जल है वो खेत में ही रोकें। फसल अवशेषों को न जलाएं। उर्वरक प्रबंधन करने के लिए फास्फोरस और पोटाश बुआई के समय दें। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया विभाजित मात्रा में दें अलग अलग समय पर। जैव उर्वरक जो होता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएं। इससे संबंधित कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं जून माह में। आप इसको इस कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं। विशेष सलाह किसान भाइयों और बहनों के लिए है कि कम वर्षा की स्थिति में बाजरा, ज्वार, तिल, मूंग, उड़द जो है सुरक्षित विकल्प है। सीमित क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर से कम पानी में सिंचाई करें। किसानों को प्रतिदिन मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि कार्य करने की सलाह दी जा रही है। कृषि विज्ञान द्वारा अनुशंसित किस्मों और तकनीकों का पालन करें। वैज्ञानिकों की सलाह माने। किसान भाइयों और बहनों के लिए संदेश है कि कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वर्षा में देरी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करें। पहली प्रभावी वर्षा के बाद ही बुआई करें। कम अवधि और सूखा सहनशील किस्मों का चयन करें और कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही कृषि कार्य करें।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: तो पला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी था ना और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और क्या कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों और बहनों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो इसका बीजोपचार कैसे करें, बेड जो है कैसे तैयार करें, इसके विषय में एक जानकारी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं ये जानकारी और जानते हैं कि धान में बीजोपचार कैसे करें और बेड कैसे तैयार करें।
4: किसान वाणी सुनने वाले अगले पंचन, आज हम लेके आए हैं अपने साथ में एक बहनी का ही। राम राम बहनी।
5: राम राम राम।
4: कैसा है बहनी अपना?
5: ठीक हन।
4: बढ़िया। कौन गाँव से आए हैं?
5: कल्ले से आए हैं।
4: हाँ।
5: और संकुल है आमडी।
4: अच्छा।
5: ब्लॉक जयसिंह नगर।
4: जयसिंह नगर से आए हैं। तो का करी थन अपना?
5: हम करी थन यहाँ ये समय खेती किसानी के सीजन चलत है।
4: हाँ।
5: तो सबसे ज्यादा अपन बीज उपचार करवाई थी ये समय।
4: हाँ,
5: हाँ जैसे किसान का है कि खेती तो करत है लेकिन अच्छा उपज पैदावार नहीं कर पाते हैं, है ना, उसका उनको ये पता नहीं है कि हम इस बीज को किस तरह से बीज उपचार करें।
4: हाँ, हम पचे गांव गवाइन के यहाँ है तो वह पिछले पुराना हाँ बीज हाँ, धर दिए हैं हाँ, और वह का फिर हम लगा दी
5: हाँ,
4: हाँ।
5: तो वो मत ध्यान दे चाहिए किसान भाई का कि जैसे हम पुरान बीज रख दी हैं फिर हाँ, वो यही से लगा देते हैं, है ना, तो वही यह ध्यान दे चाहिए वो माँ की क्या कहते, सबसे पहले वो का हम धान का कोई भी बीज लगाते हैं
4: हाँ,
5: जैसे आज हमारा सीजन चल रहा है धान की
4: हाँ,
5: बीज है
4: हाँ,
5: ना
4: हाँ,
5: तो धान के बीज को हम अच्छा से फटका ले, उसको साफ सुथरा करा ले
4: हाँ,
5: साफ सुथरा कराने के बाद वो बीज को ले करके 100 दाना
4: अच्छा
5: हाँ 100 दाना ले करके और उसको एक ठो उसको क्या कहते हैं बीज जमाते हैं, जो बीज नहीं चेक करता है पहले
4: कि पुष्ट कौन
5: हाँ,
4: सा है,
5: कौन सा पुष्ट है, कौन हाँ, अच्छा बीज है, कौन खराब बीज है, तो पहले हम क्या कर रहे थे कि बीज चेक कर लेते थे 100 दाना
4: हाँ, धान के लिए
5: हाँ, 100 दाना धान के लिए और वही अच्छा भिगा के
4: हाँ,
5: और एक ठो सूती उती का कपड़ा हो उसमें अच्छे से बांध के और उसको दबा देते मतलब गाड़ देते हैं
4: अच्छा माटी में,
5: माटी में गाड़ दिए या मतलब जहाँ पे कि ये भपक के जम जाए
4: हाँ,
5: तो वही जब वो तीसरे दिन पूरा अंकुरित हो जाता है
4: हाँ,
5: तो वही का करी थे हम पंचे कि वही खोलन और खोल के गिनन
4: हाँ,
5: या हमार कई ठे बीज जमा है
4: हाँ,
5: है ना
4: हाँ, हाँ,
5: तो वही गिनन यदि हमार वो बीज 80 ठे जम गा है
4: हाँ, 20 नहीं जमा
5: 20 ठे नहीं जमा तो ही हम पंचे जान लेते कि यह हमारा बीज अच्छा, सही अच्छा बीज है
4: अच्छा, अच्छा।
5: यदि 50-60 बीज जमत है तो ही हम जान लेते कि यह बीज हमारा खराब है
4: अच्छा।
5: जैसे हमार मान ले कि 1 एकड़ खेतबा है ना, तो माँ थोड़ी देर के लिए 3 किलो बीज लागत है, तो यदि हमारा खराब बीज है तो फिर हमें वो डबल बीज डाले पड़त है
4: ना,
5: जैसे
4: 6 किलो
5: डाले पड़ी वो हाँ, बीज ओखा मात्रा बढ़ा दे है
4: हाँ,
5: नहीं वो फिर का है कि पौधा घट जाता है रोपा
4: हाँ,
5: लगाओ के समय
4: हाँ,
5: में
4: हाँ,
5: तो हम पहले का करी थे कि बीज चेक कर ली थे
4: हाँ,
5: हाँ फिर बीज जब चेक कर ली है तब फिर का करी थे वही कि बीज संशोधन कर ले थे।
4: अब यह संशोधन कैसे किन जाते?
5: यह संशोधन किन जाते है जैसे कहा है किसान भाई नहीं जाने कि कैसे करी संशोधन, ऐसे लेके खेत में डाल देते हैं
4: हाँ,
5: है ना
4: हाँ,
5: तो पूरा पौधा तैयार नहीं हो, तो वही का करी थे कि जैसे मान लीजिए कि आपका अपने बीज अनुसार वही बीज संशोधन बनाए थे है ना
4: अच्छा।
5: मान ली यदि हमारे पास 5 किलो वह है बीज है बीज है तो हम 5 किलो बीज के लिए 5 लीटर पानी ले ली
4: हाँ,
5: और ओमा हम इतना नमक डालन नमक कि डाल के पीसे वाला जो नमक नहीं आवे पुड़िया वाला
4: हाँ, हाँ,
5: हाँ वह पुड़िया वाला का करी थे कि पानी में अच्छा से घोल दे थे
4: अच्छा।
5: हाँ वह जब पानी हमारा अच्छा घुल जाता है तब वही का करी थे कि ओमा अंडा हो या कि आलू मा ले कौनो जगह अंडा नहीं मिला है हाँ, ना
4: तो लोग नहीं खाए
5: हाँ, नहीं खाए तो वही का करी थे कि आलू ले ले थे
4: अच्छा
5: आलू अब वह जब घोल बना है नमक
4: आलू कितना ले इन जाए
5: एक ठे
4: एक के ठे आलू
5: एक ठे आलू ले के तो वही हम वह घोल में डाले ना आलू
4: अच्छा
5: हाँ तो वह आलू यदि नीचे बैठगा
4: हाँ
5: है ना तो वही जान ले कि अपन के घोल तैयार
4: अबे नहीं भा
5: नहीं
4: अच्छा अच्छा ये पहचान बताओ
5: पहचान बताई थी जी जी तो वही का करे की
4: फिर आऊ नमक डाला जाए
5: तो मैं आऊ नमक डालन फिर आऊ घोल बनाए अन हुई तो वही जब ये घोल बनायन तो फिर का करन फिर डालन आलू का जब घोल हमा बना तो वह जब आलू डालन तो वो का नीचे यदि बैठ गए तो जान लिहन के घोल नहीं बना यदि ऊपर वो तैर के आ गया है ना आलू ऊपर ऐसे चले आवत है तो वह आलू जब ऊपर आ जाते तब वो हम जान लीहन की हम घोल बन के
4: तैयार हो गया। अच्छा मतलब ये पहचान है कि अपना हाँ। के घोल में कितना नमक हो
5: कितना नमक हो के चाहिए अच्छा। तो वह जब ऊपर आ गए तो हम जान लीहन हम घोल बन के
4: तैयार
5: हो
4: गया। यह हो गया बीज शोधन
5: हाँ तो वह जो फिर हम बीज रखे हन वह बीज का एक ठो बर्तन में लीहन और वैसा बर्तन में बनवे की लोह के बर्तन में नहीं बन में का प्लास्टिक के बर्तन हो स्टील के बर्तन है ओमा हम रख ली हन और रखे के बाद वो बीज का पन डाल के और वैसे चला दी हन तो जो हमारा अच्छा बीज है वह नीचे के बैठगा
4: अच्छा
5: और जो हमारा खराब बीज है
4: वो ऊपर
5: तैरगा तो वह हम खराब बीज का निकाल के अलग टोकनी में रख लेते अब वही वही में रह दे थे ओके बाद वही अलग से बर्तन में निकाल के टोकनी छन्नी में धर ले थे तो वही जब अलग से रख लिया फिर एक बाद वही जब हमारे बीज शोधन होएगा तो वो जो बीज अच्छा बीज हमारा निकले है वही का करी थे कि फिर साफ पानी में दुई बार अच्छा से धो ले थे वही
4: जौन
5: बैठ गा रहा है वह बीज का अच्छा से धो ली हन की ओखा नमक जौन है तो मतलब वो धुल जाए तब वही निकाल के धल ले थे फिर एक बात का करी थे कि बीज अमृत से वही बीज उपचार करी थे
4: अब ये बीज अमृत काया है
5: या देखी जैसा कहा है कि जे बड़े मनाई है ते तो ले इस बाजार वाला ट्राइकोडर हाँ और जे हम गरीब हन किसान हन हमारे पास पैसा नहीं है तो ही हम कहा करी थे कि एक लीटर गाय के
4: गौमूत्र
5: ले ले थे और गाय के एक किलो गोबर ले ले थे एक किलो और एक ठे ले ले थे सूती के कपड़ा और 50 ग्राम चूना और 50 ग्राम हल्दी
4: अच्छा
5: हाँ और या बामी के मिट्टी हो या बरगद का पेड़ का मिट्टी हो एक मुट्ठी हुआ मिट्टी का ले ले थे और वही थे सब सामग्री एक अष्ठा रख ले थे एक है बात का करी थे एक प्लास्टिक के बर्तन लिहन वो प्लास्टिक के बर्तन में 4 लीटर पानी डाल दी हन एक डंडा ले लिहन वह डंडा ऐसे ऐसे ऊपर टंगा दी हन और वो जो गोबर है और सूती का कपड़ा वही में जैसा पैना जैसे पुख्ती नहीं बांध वही में बांध के इसे झुला देते हम डुबा देते पानी में
4: अच्छा
5: हाँ
4: अच्छा वो घोली नहीं
5: वो कपड़ा में बांध के कपड़ा में बांध के और वही वो बाल्टी में जो पानी है
4: जे में पानी वो पानी में वो डूबा रहे
5: हाँ वो डूबा रहा
4: है
5: पुटकी 24 घंटा तक वही हम डुबा दे थे जैसा कि आज 12 बजे डूबा हन तो कल वो 12 बजे हम वही
4: खोलब
5: हाँ एक है बात हम का करी थे वही कि 3 बजे वही में डूबा के और वैसे निचोड़ दे थे एक बार डूबान तो निचोड़न फिर निचोड़न फिर निचोड़न
4: मतलब
5: 3 बजे लगातार हम वही डूबा के निचोड़न
4: गोबर
5: का तो जो वो खरस है तो वो है हमारे वो मसब निचोड़ गा जो वो खछाछ हुआ नहीं बचा कर तो वही अलग कर वही अलग करके रख दे थे एक है बात वो मका करी थे जो 50 ग्राम हमारा चूना है वही मिक्स कर दे थे
4: काहे में पानी में
5: वह पानी में जैमा घोबल का घोल रस जैमा डुबा के रखे वही माँ अब वही माँ 100 ग्राम गुड़ पेस्ट बना के मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टाइप का कूट के और वही में डाल दे थे और जो बामी के मिट्टी रहत है ना जहाँ से वही का कहते बामी भभीटा जैसे नहीं लगा रहा
4: है समझ गए नहीं तो नहीं आए को तो
5: बरगद के पेड़ के नीचे
4: की माटी लेके आई थे
5: और तालाबों की मिट्टी ले सकी थे है ना एक मुट्ठी हुआ मिट्टी का लेके वो हिमाई से डाल के सब अच्छा से मिक्स कर देते
4: हम शादी
5: हाँ हम शादी हैं हम साय के बाद वही छाड़ दिया एक आध घंटे तो अच्छा से मिल जाए
4: हाँ।
5: एक ही बात जो हमारा धान के बीज है तो हम वही बीज संशोधन कर ली हैं फिर वह बीज वो हमारा बीज अमृत मतलब बनगा अब वो हम उठा के जो बीज रखे हैं ओमा से अच्छा से वही मिला देते
4: पानी में
5: हाँ वो पानी में ऐसे सींच के और ऐसे ऐसे बढ़िया मुँह दे थी जैसे है ना वो ये अच्छा से मुँह दी हन मिल गवा
4: हाँ।
5: फिर वही छायक जगह में थोड़ा सा फैला दी हन
4: हाँ।
5: और फिर फैला के वही हम का करी थे खेत मान है वही चाहे बेड बना के डाल दे और यह की चाहे फिर खेत मतलब लेवार टाइप जब हमारा बीज अंकुरित हो जाता है तब वही खेत में लेवार जैसे पानी चला के जुताई करवा के पहाटा लगा के वही डाल दी हन तब एक एक नंबर के हमारा पौधा तैयार हो जाता है
4: अच्छा गौमूत्र का क्या करें
5: गौमूत्र ही में डाल दी है
4: पानी में
5: जब हमारा वो 24 घंटा हो गया ना तब वो गौमूत्र और गुड़ और हल्दी और मिट्टी सब मिक्स कर दी है तब फिर वही में बीज उपचार हम अपन कर दी है जैसा वह टीका नहीं लगा
4: हाँ।
5: कहते कि बच्चा कुपोषित न हो है ना टीका
4: हाँ। बीमारी ना हो
5: बीमारी ना हो
4: हाँ।
5: वह में वो टीका लग गया कि हमारे यह बीज का कोनो बीमारी
4: न
5: हो
4: तो
5: वह जम जाए
4: याद है
5: हाँ।
4: तो मतलब एक तरह से टीकाकरण हाँ। होगा बीजन हाँ। के
5: बीजन के
4: हाँ। हाँ। तो फिर कल का हाँ। जो पौधा हो वो बीमार रहित हो
5: बीमार रहित हो ना हमारे पौधा का बीमारी ना पकड़ी
4: हाँ।
5: वो हमारा जो पौधा तो अच्छा हष्ट पुष्ट स्वस्थ पौधा तैयार
4: हो उखर बढ़िया से कल्ले फूटिया उखर बढ़िया सुंदर उसे उपराज हुई
5: उसे बहुत ज्यादा फिर हमारा उपराज हुई फिर वही का करी थे जब बो दिहान है ना तो वही फिर रोपा लगाई थे
4: हाँ।
5: वही रोपा लगाई थे प्राकृतिक विधि से
4: हाँ,
5: है ना
4: हाँ।
5: दूर दूर लगाई थे जैसा हमारे घर के यदि बीज है तो थोड़ी पास पास में लगायन यदि हमारे हाइब्रिड के बीज है तो वही हम एक एक मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी लंबाई और 25 सेंटीमीटर की चौड़ाई के हिसाब से ही हम फिर कतार बाई कतार ही लगाए थे और 12 से 15 दिन के अंदर हम पौधा लगा दे थे यदि 12 से 15 दिन के अंदर हम पौधा नहीं लगाए यदि हम सोची कि 25 दिन के एक महीना के पौधा लगाई तो कह रहा था वो में ग्रोथ करे का शक्ति कम हो जाता
4: वृद्धि होने में टाइम
5: हाँ, हाँ या सेन है जितने अपना पाला अपन पौधा में लगा दे थे उतना अच्छा हुआ हमारा वो मकान से निकलत है कम से कम 60 से 80 पौधा निकलत है
4: अच्छा
5: हाँ यदि या हम 12 दिन के अंदर से 15 दिन के अंदर हम पौधा लगा दी हन तो अच्छी उपराज होती है और बहुत अच्छा पैदावार होता है
4: तो ये तो बिल्कुल सरल विधि है
5: हाँ।
4: और सबको कई अमीर लगामे के चाहे
5: हाँ।
4: को नहीं चाहे कि मोर बढ़िया उपराज हो
5: उपराज हो
4: है ना सबको यह
5: लागत कम लगत है
4: लागत कम लगा लगे ना फिट की सब चीज घर में होते
5: सब चीज घर में होते पैसे की बचत भी
4: बचत होते और शुद्ध का शुद्ध अपन
5: शुद्ध का शुद्ध हो जाता
4: बहुत बढ़िया
5: यह से हम अपने घर वाला देसी दवाई बना के
4: बीज
5: उपचार और बीज अमृत कर ले थे
4: बहुत
5: हाँ अपन का कहते बेड बना ले थे बेड बनाए जैसे हमारे पास एक एक किलो बीज है तो हम ओखर एक मीटर के चौड़ाई ले ले थे और 10 मीटर के लंबाई ले ले थे वही और ले के वही 6 इंच की ओखर ऊंचाई ले ले थे बेड क्या और वही मान है या गोबर खाद है ना वही मान है मिक्स कर दे थे और करे के बाद वही अच्छा से 6 इंच की ऊंचाई में वही बड़ी बना दे थे और फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी दाना ले लेके ऐसे डाल दे थे हाँ तो वो हमारा पौधा का रहा था 12 से 15 दिन में पौधा तैयार जब हमारा हो जाता तो कहे बहु वालापन पौधा रहा था तो वो तो बांधा तो ओंधा तो नहीं बना है तो वही माई से लगा दे छोट छोट पौधा रहा था तो वही हम आसानी से सींच करके वो पौधा का निकाल लेते
4: अच्छा
5: हाँ निकालत बनत है यदि हम वो कर दे मतलब ज्यादा चौड़ा कर दी तो फिर निकालत हम नुकसान हुई जी हमा पौधा
4: अच्छा, अच्छा
5: तो वही हम आसानी से निकाल सके थे वही लगा दे थे
4: से एक तरह से रोपा हो गया
5: हाँ रोपा तो वही वो बेड हो गया
4: हाँ।
5: फिर बेड तैयार हो गया वही निकाल के हम रोपा लगवा दी हन
4: तो कै रोज हाँ। माही बेड तैयार होते
5: ब्रेड हम तैयार हुई जा से 12 दिन में 12 से 15 दिन के अंदर के पौधा
4: तैयार
5: हाँ तैयार हो गई वही लगाओ भमा चालू हो जाता है
4: अच्छा
5: हाँ
4: अच्छा।
5: यदि हम 20 दिन 25 दिन 30 दिन के पौधा लगाए थे ना
4: हाँ।
5: तो पैदावार भी कम होता है और ओखर कंस भी कम फोरत है
4: और उस समय तो ज्यादा लग ही जाता
5: समय भी ज्यादा लग जाता है और हमा मजदूरी ज्यादा लग गा सब चीज खर्च लग जाता
4: हाँ,
5: है या से हम जितने अच्छे
4: जल्दी कर 12 से 15 दिन के अंदर में हम ही लगा देंगे
5: हाँ पौधा लगा दे चाहे वह हमा अच्छी उपराज होता है
4: किस्मत बहनी बड़ा सुंदर बता रही है अपना कि कौन मेर से हम बच्चे बीज संशोधन करी और बीज उपचार करी और कौन मेर से बेड बने
5: हाँ।
4: और के बाद रोपा की तैयारी
5: हाँ।
4: तो ये मेर से हम बच्चे अगर खेती कर अब तो देखा हमारे सगले पंच अगर सुन रहे हैं तब बहुत ध्यान से सुनी एवं कौन पैसा लगाने के बात नहीं आये सबके घर में बेसन होते
5: हाँ।
4: सबके घर में गुड़ होते
5: हाँ।
4: और गोबर गाय तो सबको घर में पशुपालन हम बच्चे करते हैं तो सबके घर में यह चीज आए तो यह थोड़ी व्यवस्था से सबको यह मेर लगाई तो उपराज दुगुन तिगुन हुई
5: दुगुन तिगुन हुई और अपनन के लागत कम लगी
4: लागत
5: वह खर्च न लगी ज्यादा जो हम दवाई में लगाए थे बाजार से खरीद के लानी थे 1500 के है ना दवाई वो दवाई के हम पैसा बचत
4: है बिल्कुल
5: हाँ तो हम अपने घर में जब बना ली हन 10-20 रुपया खर्चा लगा गुड़ कितना मिली 100 ग्राम गुड़ 5 रुपया के मिली
4: और का हाँ।
5: 2 रुपया के चून लगी 50 ग्राम वो लगी का नाम से मिट्टी तो फ्री मिल
4: जाती
5: गौमूत्र फ्री में अपनन के मिल जाए सबके पशु गाय रखे रहते हाँ
4: हाँ हाँ।
5: हाँ ना तो सब फ्री मिल जाते तो ये मका है हम खुद के बना ले और खुद के अपने बीज के उपचार कर ले ताकि कीड़ा न लगे नुकसान न पहुंचावे तो यसे हम यमे करी थे
4: बहुत
5: हाँ
4: मैंने बहुत अच्छा अपना बताया कि कौन मेर से बीज का संशोधन हाँ। की जाए और कौन मेर से
5: हाँ।
4: हम बच्चे
5: हम यहाँ में करी थे का है कि सीजन बाई सीजन
4: हाँ।
5: अब हमारा सीजन धान चलत है
4: हाँ।
5: धान के कैली हन फिर यदि अब सीजन अरहर है उर्दा है सब
4: हाँ।
5: तो यहाँ सीजन आये
4: हाँ।
5: तो सब जितने भी बीज आवा थे
4: हाँ।
5: हम सब यहाँ में बीज उपचार कर ले थे अपने घर से बना लेते और बीज उपचार कर लेते ता हमों को लगत है हमारे किसान भाई वो करे
4: हाँ, हाँ सब सबको को फायदा हो
5: जाएगा
4: सब सुने और सब गुने
5: क्या
4: जरूरी बात
5: हाँ,
4: है किस्मत बहनी बहुत अच्छा अपना जानकारी दी है हमारे स्टूडियो में आये अपना का बहुत बहुत तो ये बढ़िया जानकारी के बाद भैया चलिए सुनवाई थे अब यह लोकगीत

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है।

0: आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
1: ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें AKASHVANISHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल।

किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रात्रि के 8 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, आप जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
3: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और EU के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के EU बनता है, और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें EU की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्क फोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया, और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसी रखी हुई है। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला है, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूं, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी, फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली, इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 trillion की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
2: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था, और EU ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9, आप 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं इनकी स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
3: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों की अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़े थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड अग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे हिस्से हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ जो देशों के साथ होगा उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
2: और यहां हम अपने श्रोताओं के लिए ये भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की FTAs की, FTA के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या? थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
3: जी देखिए, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए, अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा, और सबसे ज्यादा ध्यान जो मैंने शुरू में दो बात कही कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कीमतों के मामले में
4: हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का हर्ष तो $850 billion से ऊपर हम पहुंच चुके हैं इसको इस साल तक 2027 तक $1 trillion ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री है उन्होंने लक्ष्य रखा है तो मुझे लग रहा है ये जो FTA है ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे तो देखिए सरकार का काम होता है हर्ष एनेबलर का यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए अब इसका जो लाभ उठाना है वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में दूसरी एक जरूरी बात मैं हर्ष इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें इन्वेस्टमेंट है जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस FTA के बाद आसान हो जाएगा अच्छा प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा GDP का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है खासकर IT सर्विसेज में वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से वो भी इस FTA में शामिल की जाएगी अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है उसका भी जिक्र आएगा और सबसे बड़ी बात भारत ने जहां महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी यूरोप से लोग यहां आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे FTA का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष बहुत बड़ा होता है इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है जो बहुत सारी चीजें आ जाती है जी
2: बिल्कुल शरद आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जिसकी आपने बात की इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है
4: बिल्कुल भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं हमारे साथ और देश हैं इसमें वियतनाम है कंबोडिया है इंडोनेशिया है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है भारत की क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष आज शो के माध्यम से
2: जी।
4: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है मैं समझता हूं ये FTA को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको ये समझ में आएगा कि ये FTA मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं लोगों को नौकरियां देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसके यहां फैक्ट्रियां लगेंगी उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा
2: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में शरद कोहली जी आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
4: शुक्रिया धन्यवाद
1: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का और फिल्म का नाम है सत्या।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित।

0: हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: सुनिए
10: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। समाचार मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडबरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों लेकिन लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई एश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के

0: में बड़ा पॉल्यूशन हो, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले दो दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chased a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
6: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
5: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the deputy chief of mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
6: We had issued a statement post-summoning of the deputy chief of mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
5: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation.
6: Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, blocking essential supplies, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and mistreats.
5: The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey.
7: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
5: More from our correspondent.
8: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
5: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Text is the vision of the Prime Minister. He said, it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Text. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. The government today released the country's first trial index of services production, or ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index, with 2024-25 as the base year, covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. ISP will be released on the 29th of every month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth level officers will now visit house to house in both the states till 24th of this month, which was earlier scheduled till 14th of July. It added that the draft electoral rule will be published on 31st of this month. Railways Minister Ashwini Vaishnav has announced a major policy reform that allows fertilizers to be transported in specially designed containers instead of traditional covered box wagons. Briefing media in New Delhi today on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav also announced a major reform in fly ash transportation, shifting movement from open railway wagons to specially designed containers. The minister said the new container-based system will reduce dust pollution during loading, transport and storage.
9: If we can establish an efficient transportation mechanism, we can utilize fly ash in an economically viable way, either in cement production,

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीतकार रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और भी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिब वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

मैं सादा दिल मुजरिम सही इनके लिए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तगफिर अल्लाह अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: ਸੱਜਣਾ
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जानी और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी द The news read by Reshma Tiwari.